सत्संग जी गुरु रामदास पातशाह कल्याण मोहल्ला चौथा प्रभु की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे और ये जो है राग आप श्रवण कर रहे हो ये हमीर कल्याण है। गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज और जो ये रीत है बड़ी पुरातन रीत है पांच ताल दी बराबर दी सवारी है और आज छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं मैं कह जरा इन्होंने भी हैरान करिए आज तो गुर दे दे के क्योंकि इस तरह ही बच्चे सीखते हैं उत्साह बढ़ता है गुण गाण नाल ही रब नाल प्यार बनता है जो

ओ मौसम ओ घड़ियां ओ पल ओ समा सफल है जदों चित आवे श्री वाहिगुरु। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे पास आके ब्राह्मणा ने बेनती की, महाराज जिस तरह शास्त्रां विच शुभ अशुभ दिन गिने जांदे हन आपदे मत विच भी हन, तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे हन भई साडे मत विच तां ओ मौसम ओ समा ओ दिन ओ घड़ियां ओ पल सफल हन जदों परमेश्वर दा नाम चेते आ जावे। पले दिवस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओ वेला को हों बल जाऊं जित मेरा मन जपे हरि नाम।

वो कदम सुहावने हैं, जो कदम सतसंगत वाले जाते हैं, जो कदम परोपकार ले किसी की सेवा ले किसी के भले ले उठते।

अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफ सलाह हो रही है। ओ रसना चंगी नहीं जिड़े गंदे गीत गाउंदी है, माड़ा बोलती है। आख्या ऐसी रसना कट जाए जिड़ी गुरु की बाणी नहीं बोलती। नैन ना देखे साध से नैन बेहालिया, करण ना सुन है नाद करण मुंद घालिया। रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए, हरे हां जा विसरे गोविंद राय दिनों दिन घटिए। ते भाई उना दा हर दिन नवियां खुशियां लैके आउंदा जो अकाल पुरख वाहिगुरु दे गीत गाउंदे हन, जो दे गुण गाउंदे हन, जो दी सिफत सलाह करदे हन, इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं।

मनुख अपने घर दे सामान इकट्ठे कर रहा है। जे कोई इस नू जपन दा चेता करांदा है तां कहंदा है जी बिरध अवस्था विच जप लवांगा। हजूर कहंदे हन उस वेले तेरे कोल कुछ नहीं हो सकना, इसलिए जे जपना है तां फिर हुण ही जप लै। चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जे भा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे धर्म की आस करे, इसलिए जे जपना है।

ہم بھی ایسے باغیچے کے بوٹے بن جائیں جس باغیچے کے بوٹوں کو واشنا رہت پھل لگتا ہے، نربھان پد پراپت ہوتا ہے، ایسا پھل جس میں نام رس ہے، نام رس کے علاوہ اور کوئی بھی واشنا نہیں، اور ایسے گرو کو نمسکار کریں جو ایسا مالی ہے، جو ان بوٹوں کو امرت سے سینچتا ہے۔ دیکھنا، اس باغیچے کے باہر جا کر دیکھو، آس پاس بکھوا کے کنٹا، باہر ایرکھا ہے، دبدا ہے، کپٹ ہے، چھل ہے، باہر تو زہر ہے۔ اسی لیے ہمیں چیتن کرتے بولے، دیکھنا اس کے بھیتر آپ کو امرت سے سینچا جاتا ہے، وہ ایسا امرت جس نے آپ کو امر کرنا ہے، جس نے آپ کو جنم مرن کے چکر سے بچانا ہے، آواگون سے بچانا ہے، اور ایسا ہے جو گرو کی نظر میں پھولتا ہے، اس بوٹے کو ایسا پھل پراپت ہوتا ہے جس پھل سے وہ سچ پرگٹ ہو جاتا ہے، جس سچ سے یہ بویا گیا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے گرمکھ کی ٹیک جو ہے، نام ہے، اونلی نام، گرمکھ کی ٹیک اونلی نام، گرمکھ پرماتما کے گنوں کی سگندھی بانٹتا ہے، یہ گرمکھ کا دان ہے۔ گرمکھ پرمیشر کے نام کی کمائی کر، گر شبد کی کمائی کر، اپنے من کو، اپنی مت کو تو لیتا ہے، یہ گرمکھ کا اشنان ہے۔ پانی سے تو سب نہا لیتے ہیں، لیکن جو بانی سے نہاتا ہے وہ گرمکھ ہے۔ دیکھنا، پانی سے ہم نے اپنے تن کو، اپنے شریر کو اشنان کرانا ہے، ایسے نہیں کہ ہم نے اشنان نہیں کرنا۔ شریر کو پانی کے اشنان کی ضرورت ہے، لیکن پانی کا اشنان کے علاوہ آپ کو من کو بھی بانی کے اشنان کی ضرورت ہے۔ آپ جتنی دیر تک بانی سے اشنان نہیں کرتے، آپ کا من اروگ نہ ہوگا۔ دیکھنا، جی من اروگ نہیں، جیون بھی اروگ نہیں۔ جی جیون اروگ نہیں، یہ کایا بھی، یہ تن بھی اروگ نہ ہوگا۔ صرف ہم سوچ لیں کہ صرف تن کو اروگ رکھیں، من یہ تندرست نہ ہوگا، تے شریر بھی کام کرودھ کایا کو گال ہے، جو کنچن سہاگا ڈال۔ من کرودھ کرتا ہے، من کام کرتا ہے، لوبھ کرتا ہے، لیکن پوگنا تو شریر کو پڑتا ہے۔ پوگتا شریر ہے، اس لیے گرمکھ بانی سے اشنان کرتا ہے،
प्रभु की वाणी से स्नान करता है, अपने मन को भी, अपने मत को भी। गुरसिखी का स्नान बताते हुए भाई गुरदास बोले थे, गुरसिखी दा नामना गुरमत लै दुरमत मल तोवै, गुरु की मत लेकर खोटी मत को तो लेना। पितर शब्द अमृत वचन है गुरबानी के, ज्ञान महारस नाई है भाई, मन तन निर्मल होए। गुरु के ज्ञान के महारस में लिव लगाकर स्नान करना, सुरती जोड़कर स्नान करना, मन तो अरोग होगा लेकिन मन के साथ साथ मन के रिश्तेदार, मन के संबंधी जो ज्ञान इंद्रे हैं वो भी अरोग हो जाएंगे। देखना जे मन पितर हो गया, देखनी भी पितर होगी, बोलना भी पितर होगा, सुनना भी पितर होगा, सुंघना भी पितर होगा और परसना भी पितर होगा। बिना मन की पितरसा दे बेशक पानी से कितना स्नान कर लें, इंसान की आंखें तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की देखनी इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के पांव तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान की चाल इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान की जबान तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की बोली इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के ए हस्त पाव हाथ तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान के कर्म इंसान जैसे नहीं रहते। कारण क्या है? पानी से शरीर को तो धो लेता है लेकिन मन को वाणी से नहीं धोता। गुरुमुख ने, गुरु के बगीचे के गुरुमुख ने, प्रभु के बगीचे ए अमृत की बाड़ी के गुरुमुख ने स्नान किया है। ए शरीर सरोवर है संतो, स्नान करो लेवला। परमेश्वर से बिरती जोड़कर देखना, ऐसा स्नान किया अब तो उसकी आंखों के सामने सब में परमात्मा की जोत दिखाई देती है, उसकी देखनी कैसी हो गई। अब तो ये बोलता है, तन मन हुए निहाल जहां गुर देखा सामने। अब तो सुनता है, सुनो सत वाणी। अब तो बोलता है, रसना राम रसायन माती अखो वाहिगुरु। गुरमुख की टेक नाम ओनली नाम अखो वाहिगुरु, ओनली नाम। गुरमुख परमेश्वर के गुणों की सुगंधि बांटता है, यह गुरमुख का दान है। निरपो होए पजय भगवान, साध संगत मिल कीनो दान अखो वाहिगुरु। ऐसा दान, ऐसा दान करने वाला गुरुमुख एक बेनती कर दूं, ये कभी मरता नहीं अखो वाहिगुरु। गुरुमुख कभी नहीं मरता। देखना, शरीर जन्मेगा मर जाएगा लेकिन गुरमुख नहीं आखो वाहिगुरु। मेरे साहिब ने बोला, नानक मुए ना आखियां जे गुर कै शब्द समाहे। उन्होंने कदे मरिया होया मत बोलना, गुरमुख को कभी मत बोलना कि गुरमुख मर गया। गुरमुख नहीं मरता, गुरमुख कभी नहीं मरेगा। शरीर मरता है, जो जन्मे सो जानो हुआ, लेकिन ये बोला गोविंद भगत अस्थिर है थिया। जिसने जन्म लिया वो मरेगा लेकिन गुरमुख नहीं।
जो गुर के शब्द में समा जाए वो मरता नहीं। पितरबानी में कहा, तिथे काल ना पड़े जिथे गुर का शब्द अपार। आखो भाई, जिथे गुर का शब्द है उत्थे काल नहीं पो सकता। गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर में रहने वाला होता है। शरीर तो आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं, हम शरीर में रहने वाले हैं। हम तो तब भी थे जब शरीर नहीं था, हम तब भी होंगे जब शरीर ना होगा। आखो भाई, गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं। शरीर में रहने वाली रूह जो गुरु के सन्मुख रहती है उसको गुरमुख बोलते हैं। और गुरमुख के स्वरूप को ऐसे बताया गया, जो गुरु के सन्मुख रहता हर बात में गुरु को आगे करता है, अपने जीवन में गुरु की सोच को आगे रख कर जीता है। ऐसे गुरमुख के बारे पितरबानी में बोले थे, गुरमुख तो यह कहता है सब कुछ होते हुए भी गुरु के पास जो समरस शक्ति है वो गुरु गुरमुख को दे देता है, लेकिन गुरमुख ये बोलता है ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो आखो किस हर किया पेओ कबीर कबीर। भगत कबीर जी बोलते हैं गुरमुख के जीवन के लिए, वो तो बोल रहा है ना हम किया ना करेंगे ना हमारा शरीर कुछ कर सकता है। देखो कबीर कबीर अब संसार बोल रहा है, एक कृपा किसकी है जिसका कबीर ने नाम लिया। ये अंदर से मोह ममता मर चुकी है, ये किसने मारी? प्रभु के नाम, जिस प्रभु के नाम की समर्था प्रकट हुई है वो ही करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक मनमुख भी है, कर तो कुछ सकता नहीं लेकिन अपने आप को गिनाता है। वो तो सत्संग में आकर भी आपकी मन की बात मानता है, गुरु की नहीं। वो ये बोलता है हम किया हम करेंगे, आखो भाई हम मूर्ख, आखो भाई गवार, करने वाला बिसरिया दूजे पाए पिया। कर कुछ सकता नहीं लेकिन मनमुख बोलता है कि हमने किया, हमने सत्संग बुलाया, हमने इकट्ठ किया, हमने बोला, मेरे बोलने से ये बात हुई। मनमुख तो ये बोलता है, जो करने वाला है उसको उसने बिसार दिया है, कर कुछ सकता नहीं। पितरबानी में ऐसा बोला, कहते गुरमुख मुए जीव दे प्रवाण है, मनमुख जन्म मरा है। आखो भाई, देखना आपने एक वृक्ष देखा, वृक्ष में आपने टाणियां देखी, टाणियों में पत्ते, पत्तियों में फूल, आपने फूलों को फल बनता भी देखा होगा। हवा आती है चूलते हैं, पता पता उसका खेड़े में है, फूल खेड़े में है, उसकी टाणियों भी हवा से चूल चूल कर मस्ती में शोर मचाती हैं। लेकिन उसे टाणियों में एक टाणी तोड़ ले, देखो जन्म तो वृक्ष का हुआ, सब टाणियों का हुआ,
लेक टाणी उससे तोड़ लें, उस टाणी को तोड़कर उसको छील भी लें, अब वो टाणी नहीं रहेगी, वो छड़ी बन जाएगी। हम उसको अब टाणी नहीं बोलेंगे, उसको छड़ी बोलेंगे। लेकिन छड़ी तो मुर्दा होती है, छड़ी तो जीवित नहीं होती, छड़ी को तो फूल नहीं आएंगे, छड़ी को फल नहीं लगेगा। छड़ी जीवित नहीं, छड़ी मुर्दा हो चुकी है। वृक्ष से टूटने से छड़ी मुर्दा होगी, वृक्ष से टूट गई उसका जीवन मर गया, वृक्ष से टूट गई अब वो खिड़ेगी नहीं, वृक्ष से टूट गई फूलेगी नहीं फलेगी नहीं। देखना ये जिस वृक्ष से ये टाणी को तोड़ा गया, दूसरी टाणी को देखो जो अभी भी वृक्ष के साथ है, वो जीवित है, उसमें रस है, वो वृक्ष से रस लेती है, धरती से रस लेती है। क्या हो गया जे पतझड़ आ गई, लेकिन बसंत रुत की फिर कामना है। आखो भाई, जो वृक्ष से जुड़ी है फिर बसंत रुत आ सकती है, उसमें खेड़ा आ सकता है। देखना टाणी का जन्म, छड़ी का जन्म हुआ तो धरती से, लेकिन जन्म लेकर जीवन में एक वृक्ष से जुड़ी रही, एक वृक्ष से टूट गई। जो टूट गई वो मुर्दा हो गई, जो उसके साथ जुड़ी रही वो जीवित रही। ऐसे ही मन मुख वो छड़ी है जो परमेश्वर वृक्ष से टूट गए हैं, उनका नाम साकत है, उनको मनुख नहीं बोलते, मनमुख बोलते हैं। वो मुर्दा है, वो जीवित नहीं, वो आत्मिक तौर पर मर गए हैं, जीवित नहीं, वो छड़ी जैसे हैं। पेशा कितना अपने आप को सवार लें, लेकिन जीवित नहीं, आत्मिक तौर पर जीवित नहीं है, मुर्दा है, उनको फल नहीं लगेगा। वो किसी को भी अपनी बगल में सुख नहीं दे सकते, जैसे छड़ी किसी को छांव नहीं दे सकती। छड़ी किसी को पीड़ तो सकती है, सुख नहीं। मन में किसी को दुखी तो कर सकते हैं, लेकिन सुख नहीं। शायद इसीलिए हमें बोला, मन मुखा नालो तुटी भली, जिन माया मोह प्यार। लेकिन गुरमुख वो छड़ी है, वो टाणी है जो परमेश्वर वृक्ष से जुड़े हुए हैं। देखो जन्म तो मनुख का भी, जन्म गुरमुख का भी माता की कुख से हुआ है, जन्म एक जैसा है। लेकिन जन्म पाकर जीवन में एक तो प्रभु वृक्ष से टूट गए, एक परमात्मा की याद में जुड़े रहे। जो जुड़े रहे वो तो फल प्राप्त करते हैं, वो खिलते हैं, सदा विकास में रहते हैं। आप विकास में, दूसरे को भी विकास में रखते हैं। लेकिन जो मनमुख हैं, टूट गए, उन्होंने तो अपना जन्म भी बर्बाद कर लिया, अपना जीवन भी निष्फल कर लिया। ऐसे लगता है वो अपना मरना भी निष्फल कर रहे हैं, मरना भी बर्बाद कर रहे हैं, बर्बादी पर हैं, मरना खराब कर रहे हैं। देखो जीवन तो वो है जो जीवन जीते ही हम जीवन जीते हुए अपने ऐसा जीवन जिए, अपने जन्म को भी सवार लें। संसार वाले कहें इनकी माता तो धन है जिसने जन्म दिया है, जीवन में भी धन धन हो तो अपने जीवन में अपने मरने को आप सवार कर चले जाएं, ताकि जाने के बाद सब प्यार से याद करें।
ऐसा ही बोला। गुरमुख मुए जीवदे परवान है, ओता जूंदे भी परवान ते मरण तो बाद भी परवान, पर मनमुख मनमुख जन्म मरा है आखो वाहिगुरु। मनमुख ने अपना जन्म बर्बाद किया है, कैसे पितरबानी में शब्द से हमें समझाते हैं।

सो जन हुए परवान, कुल उधारे आपना। सो जन हुए परवान। कोई समा था किसी से सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले सुगंधी के नजदीक पहुंचे। वैसे सुगंधी का एक स्वभाव भी है, कैसा है? सुगंधी हमेशा ही फूल के नजदीक ले जाती है। जी अगर नजर फूल ना भी आए तो उसकी याद में समो देती। ये सुगंधी का स्वभाव है। सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले जिधर से सुगंधी आ रही थी उधर पहुंच गए। जिसके पास वो फूल था सुगंधी देने वाला, वो बोला, देखना ये सुगंधी इस फूल की है। देखने वाले ने फूल को देखा, उसके खेड़े को देखा, उसकी पत्तियों को देखा, गुलाबी रंग को देखा, बहुत मस्त हुआ, कैसा सुंदर फूल। समय बीत गया, कई सैकड़े वर्ष बीत गए, लेकिन सुगंधी फिर भी आती रही। सुगंधी को सूंघने वाले फिर उसके पास पहुंचे। पहले तो आपने फूल दिखाया था, अब तो आपके पास फूल नहीं है। फूल तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सुगंधी कैसे आ रही है? वो बोला, ये बात तो बिल्कुल सत है, हमारे पास फूल नहीं, ना हम फूल को दिखा सकते हैं। जब हमारे पास फूल ही नहीं, दिखाएं क्या? लेकिन ये सुगंधी उस फूल के अत्र की है। अब फूल नहीं है, हमारे पास अत्र है, ये अत्र की सुगंधी है। ऐसे ही मालूम होता है गुरमुख जीवन में सुगंधी बांटते रहे, आंखों भाई सूंघने वाले सूंघते रहे। जितनी देर तक गुरमुख उनको शरीर मिला, उतनी देर तक उस शरीर में सुगंधी का प्रकाश किया। उनका संग करने वाले वो शुभ गुणों की सुगंधी लेते रहे। जो जीवन में दुर्गंध थी, मनुख के भीतर थी, उस दुर्गंध को मिटाने के लिए गुरमुख का संग क्या है? सच का संग, सत का संग, ऐसे विचारों का संग जो सत में प्रवेश करते हैं। गुरमुख का बोलना भी सच, गुरमुख का गाना भी सच, गुरमुख का सुनना भी सच, गुरमुख का देखना भी सच। ऐसे लगता है गुरमुख के पास सच के अलावा कुछ और होता ही नहीं, सच ही सच। सुगंधी लेते रहे, पर कितने वर्ष बीत चुके, गुरमुख का शरीर तो नजर नहीं आएगा, ना आवेगा, लेकिन सुगंधी तो आज भी लेने वाले लेते हैं। जीव दया मोया ना बिसरे, जीते हुए भी सुगंधी देते थे, हम उनको याद करते थे। ऐसे गुरुमुख सदगुरु का संग करते थे, सदगुरु को अपने जीवन में भी याद करते थे, सदगुरु से गुरु शब्द की सुगंधी लेते थे, गुरबाणी की सुगंधी लेते थे,
गुरशब्द की विचार की सुगंधी लेते थे, आप देखो शरीर चले भी गए, हम भी वही सतगुरु की, वही शब्द की, वही गुरबाणी की सुगंधी आप भी ले रहे हैं। ऐसे मालूम होता है कि गुरमुख जीते जी भी सुगंधी बांटते हैं, मरने के बाद भी बांटते हैं। गुरमुख जीते जी भी अपने सतगुरु को नहीं भुलाते, मरने के बाद शरीर छोड़ जाते हैं, उनकी याद में बैठने वाले भी उसी ही सतगुरु को याद करते हैं। इसलिए ठीक बोला, गुरमुख मरते ही नहीं। आखो वाहिगुरु, मरेंगे तो हम शरीर मरेंगे, वो कैसे मरेंगे? इसलिए हमें बोला कि देखना गुरमुख की बरसी मत मनाना। आखो वाहिगुरु, गुरमुख की याद मनाना, बरसी तो उसकी मनाएंगे जो मर गया है, शरीर मरा है, गुरमुख तो मरा नहीं। आखो वाहिगुरु, गुरमुख की याद मनाओ, बरसी नहीं। मरत मरता तो है ही नहीं। देखना बंसरी बजती थी, बंसरी बजाने वाले बंसरी बजाते रहे, बहुत बजाई, सुनने वाले बोले बस करो, बहुत हो गया, आपने बंसरी बजा ली, अब तो आराम कर लो। लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। फिर बोलने वाले बोले आप कुछ खा पी लो, आपको भूख लगी होगी, बाद में बजा लेना। लेकिन बंसरी रुकती नहीं। फिर बोला आप पानी पी लो, प्यास लगी होगी। लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। ऐसे लगता है अब तो बंसरी बजाने वाले को बजा रही है, बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा। अब ऐसे मालूम होता है कि बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा, बल्कि बंसरी ही बजाने को बजा रही है, बंसरी बजाने वाले को बजा रही है। देखो बंसरी बजाने वाला हीरो हो गया, वो तो बंसरी का रूप हो गया। अब उसको ना भूख है, ना प्यास है, ना आराम है, बिल्कुल हीरो हो गया। ऐसे ही गुरमुख जो शब्द का अभ्यास करते हैं, नाम वाणी का अभ्यास करते हैं, प्रभु की कीर्ति करते हैं, इतना अभ्यास किया शब्द का, इतना अभ्यास किया शब्द का, अभ्यास करते रहे करते रहे करते रहे, ना उनको ऊंग है ना भूख है। आखो बोला गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग ना भूख है, हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रकाश। ना ऊंग है ना भूख है। मैं एक बेनती करूं, गुरमुख को कभी आलस आता ही नहीं। जे हमें आलस आता है तो समझ लेना अभी हम गुरमुख नहीं बने। आखो भाई, जिसका गुरु ये बोले आपने अमृत वेले को संभालना है, आलस क्या करेगा? गुरमुख आलसी नहीं होता। जे अगर अभी भी हमें आलस है तो हम गुरमुख नहीं। आखो वाहिगुरु, मनुख हैं, मनुख आलसी होते हैं। आखो वाहिगुरु, लेकिन गुरमुख नहीं। गुरमुख के जीवन में ना ऊंग है ना भूख। आखो गुरु शब्द का अभ्यास करते करते ही रे करते ही रे, गुरु का शब्द का अभ्यास करते करते ऐसे हुआ अब तो ऐसे लगता है अभ्यासी अभ्यास नहीं कर रहा, बल्कि गुरु शब्द अभ्यासी को अभ्यास करा रहा है। अभ्यासी कीर्तन नहीं कर रहा, बल्कि कीर्तन अभ्यासी को कीर्तन करा रहा है। आज नाम वाणी की कमाई अभ्यासी नहीं कर रहा, बल्कि नाम वाणी अभ्यासी को अभ्यास करा रही है। आ देखना अभ्यासी तो जीरो हो गया, अभ्यासी कहां गया? अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू ही रह गया। आखो वाहिगुरु, अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू रह गया। जब मैं था आप नहीं थे, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अब तो ऐसा हो गया जब मैं ही मर गई, जब
हमारी मेहमर की, केवल तू ही रह गया, फिर तू तो मरता नहीं, मरने वाली तो मर गई, आखो भाई करो, मरने वाली तो मर गई, अब कौन मरेगा, कोई भी नहीं मरेगा, अब कौन मरेगा, मरने वाली मर गई, आखो भाई मरने वाली मैं मर गई, जिसकी मैं नहीं मरी वो जीते ही मर गया, जिसकी गुरु शब्द की कमाई से मैं मर गई वो कभी नहीं मरेगा, गुरुमुख ने मैं मार ली, अब तो कहते हैं गुरुमुख नहीं मरेगा, आखो भाई नानक मुए ना आखियां जे गुर कह शब्द समाए। एक पितर शब्द में बोले परिसरी जे उबरी हो मैं गई मरा हो, कहंदी बड़े चंगा होया, पली होगी, चंगा हो गया साहिब, कहंदी पली सरी बड़ी अच्छी होगी, मैं बच गया, आखो भाई पली सरी जे उबरी, उबरी बच गया, कहंदे होमे जेड़ी सी ना मेरी मैं मर गई, आखो भाई होमे गई, होमे मुई कराओ, मेरे घर विच ही मर गई, आखो भाई गुरु मेरे सामने ही मर गई, जे नस जांदी तां शायद फिर वापस आज नहीं मारी गई, आखो भाई गुरु होमे मुई कराओ, मेरे घर चो ही मर गई, आखो भाई गुरु जब मेरे घरों मर गई तो मैं बच गया, आखो भाई गुरु, कहंदे फिर होया कि जदों ये मर गई, कहे दूत लगे फिर चाकरी, आ जिहड़े सी ना पंज पहला मैनूं सताउंदे सी, आखो भाई हुण मेरी सेवा करन लग गए, आखो भाई, कहंदा जिनी देर तक होमे सी ये मैनूं सताउंदे सी, पांच विखादी एक गरीबा राखो राखन हारे, देखो मेरा चित करता सी अमृत वेले उठा, ये लोभ मेरे तो पहले उठ पैंदा सी, एक सवान दो सवानी नाल ये दोनों लोभ रूपी कुत्ता मेरे नो पहले उठ पैंदा सी, मैं अजे सिमरन नहीं सी करता, बाणी नहीं सी पढ़ता।

मंदा तो अंदर ईरखा अंदर दुबदा उठ खड़ी होंगी सी आखो भाई मेरा कदम कदम ए मेरी होमे मरना करके ऐसे पासे लै तुरदी सी जिस पासे इंसानियत मरदी सी ते शैतान प्रगट हुंदा सी आखो मैं की करा पर कहंदे ऐसी गल हो गई होमे मर गई घरों ही मर गई आखो वाहिगुरु हुण तो होमे दी लाश पई है होमे दी लाश पई पई है मैनू कदा डर है आखो वाहि मर गई होमे गई मुई कराहो दूत लगा फिर चाकरी आ देखो हुण जेड़े दूत सी हुण तां सेवा विच लग गए हुण तां एक क्रोध दया दा रूप धारण कर गया लोभ संतोख दा रूप धारण कर गया आखो भाई हंकार मोक्ष दा रूप धारण कर गया काम सत दा रूप धारण कर गया आखो भाई हुण तां ये पांच मनाए पांच पांच रुस गए पांच वाह वसे हुण तां ये चाकरी लागे कहंदे होया किवें दूत लगा फिर चाकरी सतगुरु का विसाओ जो मैं सतगुरु मिल गए तो सतगुरु का भरोसा हो गया सतगुरु का भरोसा सतगुरु के शब्द का भरोसा सतगुरु की बाणी का भरोसा सतगुरु की सिक्ख्या का भरोसा सतगुरु के सोच का भरोसा सतगुरु की सोच सतगुरु का शब्द है सतगुरु का सुभाव सतगुरु का शब्द है सुगंधी शब्द की आखो वाहिगुरु सुगंधी शब्द की जीवन विच भी मिलती रही अज कहंदे गुरमुख ने उस सुगंधी नू पा पा के ऐसा सुगंधी रूप हो गया मैं मर गई हुण तां तू रह गया तू रह गया तू रह गया आखो भाई सिर्फ तू रह गया आखो भाई तू तां कभी मरता नहीं मरने वाली मर गई आप फिर गुरमुख की बरसी कैसे मनाए आखो वाहिगुरु गुरमुख की याद मना सकते हैं मत मोलना के गुरमुख मर गया आखो वाहिगुरु गुरमुख नहीं मरता जो गुरु के शब्द के कर में समा जाए नानक मुए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाए जे गुर कै शब्द समाए जे गुर कै शब्द समाए जो गुरु दे शब्द नू कमा लेंदे हन ओ फिर मरदे नहीं आखो भाई अज दे पितर शब्द विच भाई साहब बोले गुर सिख साखी शब्द सिख सुनाया गुरमुख शब्द विचार सच कमाए आखो भाई ए गल कह के मैं समाप्ति करांगा 10 मिनट दा मेरे को और समय आखो भाई गुरमुख साखी शब्द सिख सुनाया गुरमुख शब्द विचार सच कमाया सच हृदय मु सच सच सुहाया आखो भाई आखो भाई साखी शब्द गुरमुख गुरु दी सिख्या गुरु दियां साखियां सुनाउंदा आखो भाई गुरमुख शब्द विचार नू सुनदा सुनाउंदा ते कमाउंदा गुरमुख ने यह जान लिया कि जीवन जूंदिया ही किवें मुक्त होना आखो वाहिगुरु बेनती करा संसार दे लोकी मुक्ति उस नू मनदे हन जो मरण तो बाद मिले पर सतगुरु ने ऐसा गुरमुख नूं समझाता कि जूंदियां ही जीवन मुक्त होना ही मुक्ति है आखो वाहिगुरु आखो वाहिगुरु उस बारे किवें कहंदे हन तां श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का पितर शब्द जो जीवन मुक्त दे सुरूप नूं प्रगट करता है गुरमुख उह शब्द दृढ़ करता है गुरमुख ने यह जान लिया गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आ गया मन में सह

ऐसा गुरुमुख का जीवन जो जीवन मुक्त हो जाता है, प्रभु की आज्ञा को मानकर, ऐसा प्रभु का पुजारी जो जीवन में प्रभु के गुणों की सुगंधि लेकर दूसरों को भी ऐसी सुगंधि बांटता हुआ, ऐसा फूल जो किसी के गल का हार बनकर, किसी के मस्तक का श्रृंगार बनकर कुर्बान हो जाता है। फूल होना भी ऐसा चाहिए, सुगंधि बांटता रहे, तोड़ने वाले के भी गल का हार बन जाए, किसी के मस्तक का श्रृंगार बन जाए। गुरुमुख का जीवन ऐसा ही है, मजलूमों का सहारा बन जाता है, दुखियों का सहारा बन जाता है, उनको सुखों की सुगंधि बांटता हुआ अपने आप को तो कुर्बान कर लेता है, लेकिन शरीर के मरने के बाद भी अपनी सुगंधि जो बांटता रहा जीवन में, वो मरने के बाद भी बांटता रहता है। ऐसा परोपकारी जीवन गुरुमुख का है, जैसा भाई गुरदास ने बोला, गुरुमुख परोपकारी बिरला आया। इत्थे ही विचारां दी समाप्ति है। कीर्तन करते हैं, विचार करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, कई प्रकार दियां भुलां हो सकदियां हन, बख्श लेनी है बख्श लेनी है। दूसरी बार हिंदी विच व्याख्या करते हुए इस तरह एहसास हुंदा है कि कई बार परमेश्वर दी ऐसी कला वरती है, जदों पितर बाणी अपने विच समो लैंदी है, फिर याद नहीं रहता क्या बोलना है क्या नहीं। जे उस समय हम उधर चले जाएं कन्वर्सेशन में, तो अंदर से टूटना पड़ता है, टूट कर बात नहीं बनती। टूटने वाला तो टूट जाएगा, दूसरे को भी तोड़ देगा। इसलिए मैं क्षमा की याचना करता हूं। बोलते बोलते नहीं मालूम रहता क्या बोलना है। ऐसे लगता है बोलने वाला ही बोलता है, उसकी इच्छा है जैसा बोले। हम बैठ भी जाएं, नित की बानी याद करते हैं, लेकिन जे नहीं बोलना चाहता तो बानी स्टेज पे ही भूल जाते हैं। ये याद कराता है तो कई कई वर्षों की बानी चेते की चेते आ जाती है। ऐसे है, हर आपे बोले आप बुलावे। आखो भाई, आपके दर्शन करता हूं तो ऐसे लगता है आपे संगत सद बहाल है। आखो भाई, मैंने आपको नहीं बुलाया, बुलाने वाले ने बुलाया था। आखो भाई, बैठाने वाले ने बिठा लिया, अब समाप्ति हो रही है, आपे विदा करावे, विदाईगी भी आप देगा। आखो भाई, लेकिन इसकी विदायगी देने का एक बहुत ही बिस्माती रंग है। जब बुलाता है तो अपने आप को बिस्माती रंग में प्रकट करता है, जब आपको भेजता है तो आपके ऊपर बिस्माती रंग प्रकट कर देता है। देखना, बाहर जाने से पहले इस बिस्माती रंग को संभाल लेना। आंखों वाहेगुरु, ये बहुत काम आएगा। बाहर जाकर जो कुछ और रंग है वो काम नहीं आते। वो रंग तो बिंस जाते हैं, मैले हो जाते हैं, उस रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है। लेकिन ये रंग जे आप ने संभाल लिया, ना खोया, फिर जब मिलेंगे, आपको सुनने का अवसर परमेश्वर और दे देगा, और मेरे भाग जागेंगे
क्योंकि आप ऐसे सुनने वाले बन जाएंगे, ऐसे श्रोते बन जाएंगे कि श्रोते में बहुत शक्ति है। जे श्रोता अच्छा मिल जाए, विषमादी रंग वाला मिल जाए, भक्ते के अंदर जो कुछ होता है सब बाहर निकाल लेता है, अंदर नहीं रहने देता। ये सच्चाई है। जे श्रोता विषमादी रंग में सुने, वक्ता जो मर्जी लुकोना चाहे अंदर नहीं लुको सकता, वो प्रकट हो जाएगा। श्रोते ने अंदर से बाहर निकाल देना है। मेरी तो ये प्रार्थना है आपको ऐसा ही श्रोता बनाए। जब फिर अवसर मिले मैं आपके दर्शन करूं, तो मुझे लगे कि आप ऐसे श्रोते हैं, अब तो सिर्फ अंदर से जो परमेश्वर ने अंदर दिया है आप उसको बाहर ही निकालेंगे नहीं, बल्कि एक मेक हो जाएंगे। आंखों भाई आपके सुनने वाले ते सुनाने वाले में अंतर खत्म हो जाएगा। आंखों भाई ये मेरी प्रार्थना है। आओ अनंत साहब जी का पाठ। रामकली महला तीजा अनंत एक ओंकार सद

निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, हाय हाय, निर्धन को पाले, गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहनी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा दा नाम है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन किया है केवल बोल के लंघते हैं अज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैन पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लंघा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू सत्संग जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत्संग आज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ये पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण सारे कृपा करो